बड़ा के शैल बड़ा के मिठा गीत सुनिए नंद गया ही आप त्यास गल करा दे ही जम्मू प्रदेश दी ते मैं आ जंदी आरजे नेहा शर्मा ते जदो राजे ने दिखया ते उन्हें फिर उस जगह ही बसाने दा निर्णय ले लेता। उस राजे दा नाम है राजा जी जम्बू लोचन ते उन्हें राजे दे नाम पर इस जुग प्रदेश दा नाम पिया जम्बू पर उन सरल भाषा च जम्बू बोलते बोलते जम्मू के हो गया। ते कनेही लगी तुसी कहानी ये जिहड़ी कहानी है एक दंत कथाएं च एक है जिहड़े साढ़े बड़े बुजुर्ग असीं सुनांदे ने असीं सुनी दी है अपने जम्मू प्रदेश के नाँ के पिछे का महत्व। तो इस कहानी का प्रभावित होइए मैं ये अपनी कविता भी लिखी ही सच च गए इसी मंदिर का थां रखते हैं। इतने बड़ी बड़ी चमत्कारी जगहां उनके बड़े बड़े महत्व ने बड़े ही इतने लोग जड़े ने बड़े मिलनसार बड़े मेल भाव करने रोंदे ने। ये जिहड़ा शेर ते बकरी का उदाहरण है वह अज भी कुदे ना कुदे मेरे डुग्गर प्रदेश विद्यमान है। लोग बिना द्वेष भाव के रोंदे ने कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते ने बड़े ही प्रेम करने रोंदे ने। ते मैं प्रार्थना करनी हां ये प्रेम सदा इन्हें सारे लोकें च बने दागे रवे। ते तुस सुनो आज दे एपिसोड दा अगला गीत।

0: डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: इंडियन पंजाबी बसा 115 फादर टोबन रोड ब्रैम्पटन विच भारतीय ग्रोसरी दा भंडार इंडियन पंजाबी बसा जिथे ताजे फल ते सब्जियां दालां मसाले ते आटा गल की थवाडी ग्रोसरी दीआं सारीआं लोड़ां पूरीआं कीतीआं जांदीआं ने। तुसीं उहनां दी मीट शॉप तों मच्छी, चिकन ते गोट मीट भी खरीद सकदे हो। इन्ना ही नहीं मिठाइयां ते टेक आउट भोजन दा भी प्रबंध है। भारतीय ग्रोसरी मीट ते मिठाइयां लिस्ट दा इक नाम याद रखो, इंडियन पंजाबी बाजार।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: राहुल गांधी और वो जो दीपिका जो कह रहे हैं और वो टाइफाइड हो गया है, चला जावे उत्थे रांची में इलाज करा लवे, और दीपिका के वो जो साथी जेड़े से गया नाच गाना कर रहे थे फाइव स्टार होटल में, वो सारी किथे है जगह ऐसे बारे दसो, ये सारे कॉकरोच कितने चले गए जी। और ये केजरीवाल फिर नौटंकी फिर चल रहे हैं, और वो सारे ये क्या बोलते हैं ये अपने पार्लियामेंट में फिर वही चालू कर दिया है, ये दोनों हिंदू दी वोट किए मिलेगी, तो सिर्फ पार्लियामेंट में मुद्दा उठाओ तो बाहर की नौटंकी चल रही है जी। अदे बारे दसो जी, धनबाद जी,
1: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। रमेश जी,
2: देखो इस विच ते कोई शक नहीं कि नौटंकी बड़ी सिरे ते चल रही है पार्लीमेंट के बाहर भी ते अंदर भी। मैं बीते दिन दो तस्वीर वेखियां, मैं दस्या भी कि किस ढंग दे नाल एक संसद मैंबर उत्थे पजारी बन के बह जाता है, किस ढंग दे नाल उत्थे सियासत अंदर ते बाहर हो रही है। वह जिहड़ा धर्मेंद्र प्रधान जिहड़ा अस्तीफा भाजपा सरकार नूं आखिरकार लैना पै गया, जदों अस्तीफा देने तो दूजे दिन बाद वह पार्लीमेंट च आउंदा है, किस ढंग फुलां की वर्खा की जाती है कि जिवें उसने रण जित्या होवे कोई, यह है तो सारी नौटंकी है। इहदे विच मैं स्रोतियों किसी एक व्यक्ति एक मैंबर पार्लीमेंट जां एक पार्टी नूं कटहरे च नहीं खड़ा कर सकता, यह सारी एको पासे दे है। एवें असीं भुलेख च ना रह जाइए कि शायद केजरीवाल कला ही नौटंकी करता है, भाजपा बड़ी साऊ है, जां कांग्रेस बड़ी करती है, दूजी साऊ है, सारी नौटंकी भाव की केवल तो केवल सियासी रोटियां इसे ढंग के नौटंकी नाल ही सेक रहे, मुद्दों वाली तो गल रह ही नहीं गई। हाँ, कांग्रेस जनता पार्टी का तुम जिक्र किया अभजीत दिपके का, देखो मैनू नहीं पता बाकी की कहें है, जो तुम इस प्लेटफॉर्म के हाणी हो, तुम इस प्लेटफॉर्म के साथी हो, मैं पहले दिन तो जिस दिन कांग्रेस जनता पार्टी बनी अज तक एको शब्द प्रयोग कर रहा है बेटेंटबाज, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी ने की किया वह अंदोलन एक अलग है। अभजीत दिपके क्यों आया, किमें आया, रातों रात किमें फेमस बन गया, किमें उसनों जंतर मंत्र आने दिता गया, जिहड़े दूसरे मुंडे उहदे नाल आए, जिहड़ा तुसीं बिल्कुल सही जिक्र किया है कि जित दी देखो जित दे जलूस निकलते तो असीं देखे आ, जित दीआं रैलियां ते असीं भी वेखियां है, परंतु जित दे जशन होटलां च मनाउणे असीं नहीं देखे। शायद यही एक कारण आ कि मैं पहले दिन तो वेट एंड वाच कांग्रेस जनता पार्टी नूं लैके इक्को ही शब्द का प्रयोग कर रहा, ना उहनूं मैं कांग्रेस नाल जोड़ा, ना उहनूं मैं अकालियां नाल जोड़ा, ना उन्होंने मैं आम ना जोड़ा, तो ना उन्होंने अच्छ भाजपा के नाल जोड़ा, अपने आप ही जुड़ जाने जिथे जुड़ने हैं। इस करके अजे भी वेट एंड वॉच है, असी वो सारा वेखिए, चंगे नूं चंगा कहिए, माड़े नूं माड़ा कहिए, अजे तक असी कोई फैसला ना लईए कि कांग्रेस जनता पार्टी किहदी क्रिएशन है, रुक जाने थोड़ा समा
1: जी। बिल्कुल जी, 905-673-3337 905-673-3337 लिवाना वैलेंस स्पा का सुनेहा थोनों दईए, जे तुसी वर्क फ्रॉम होम करके जां लंबी ड्राइविंग करके तुसी लंबे समय तो ड्राइव करके थोड़े बैक पेन हो रही है, तुसी अपनी बैक दे विच वधिया सुधार चाहते हो तो तुसी लिवाना वैलेंस स्पा ते पहुँचो। पुरानी नवी बैक पेन, अपर पेन, लोअर बैक पेन, सियाटका बैक पेन, कोल रजिस्टर्ड थैरापिस्ट ने, सो इंश्योरेंस नूं सीधी बिलिंग कर देने जे तुहानूं काम वालों इंश्योरेंस मिली आ ते मैसेज।
3: की तुसी रोजाना दी भज दौड़ अते स्ट्रेस तों मुक्ति चाहते हो? की तुसी लभ रहे हो एक अजिही जगह जिथे तुहाडे शरीर अते रूह नूं मिले सुकून? तो हुण इंतजार खत्म, ब्रैम्पटन विच खुल गया है लिवाना वैलनेस स्पा। साडे तजर्बेकार अते प्रोफेशनल थेरेपिस्ट्स 100% हाइजीन एनवायरनमेंट अते एडवांस्ड इक्विपमेंट्स दे नाल तुहाडी सेवा लई हाजिर हन। साडियां खास सर्विसेज रिलैक्सिंग अते मसाज थेरेपी, प्रीनेटल अते पोस्टनेटल, ग्लोइंग हाइड्रा फेशियल, लेजर हेयर रिमूवल अते बॉडी कंटूरिंग, अते हां इंश्योरेंस बेनिफिट्स वाले ग्राहकां लई डायरेक्ट बिलिंग दी खास सुविधा भी उपलब्ध है। ता देर किस गल दी, अज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। पता 534 पार्कहर्स्ट स्क्वायर, ब्रैम्पटन। फोन नंबर 416-811-5385। लिवाना वेलनेस स्पा, जो रखे तुहाडी सेहत अते सुंदरता दा ख्याल।
1: 905-673-3337 905-673-3337 अगली कॉल आ जी सुरेंद्र सिंह जी, बस शॉर्ट जिहा रखियो जी तां कि तुहाडा शॉर्ट जिहा जवाब ते रमेश जी उहदा जवाब दे पाउण, समां आपां कोल सीमित है जी। सर सति श्री अकाल।
4: हेलो
1: जी, जी सर सति श्री अकाल जी।
4: गंद पक रिया सी किसी भी खिलाफ हो, चाहे मोदी धर्मेंद्र प्रधान दे होवे, तुहाडे होवे, मेरे होवे, जिन्हां ने भद्दी लैंग्वेज बोली आ
1: जी,
4: मां नूं भैणां नूं लोकां दीआं नूं, मैं तो वर्ड कह नहीं सकदा, तुसीं सारे सुणी होवोगे, बस अपनी

0: जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी रमेश जी।
1: देखो एक आप महारा जिदे ना सदन वाले नू पता सी कि किना ने भाग लैण आना है ते ना जिहड़े भाग लैण आए उन्हां नू पता सी कि साडा लीडर किहड़ा है। वो आप महारा एक अंदोलन सीगा, मुद्दा बड़ा अहम सी, वड्डा सी, उहदे मगर कौण है उहते चर्चा असी अजे करनी नहीं हैगी, वह असी सारे जने तलाश पेचा। जिहड़ी चीज़ का तुसी जिक्र किया मैं मैनूं लगता कि उन्हां पत्रकारां चों एक हैगा आ जिहड़े टामे टामे पत्रकार है, जिहड़ा पहले दिन तो बहुत सारिया चिंता इस अंदोलन लैके मैं कर रहा, बहुत सारिया चिंतावान नैगेटिव भी पॉजिटिव भी, तुसी जिहड़ी चिंता की है जायज है। तो जदों तक उस अंदोलन का एक तजर्बेकार लीडर ही है नहीं, कोई वैली वारसी है नहीं, तो फिर असी इस करके आ जिहड़े तुसी मुद्दे चुके हुण खड़े होने सुभाविक सी। इस तों अलावा भी कई दिक्कतां ने, असी उधर नूं असी नहीं जा रहे, सो इस करके चलो जिन्ना क अंदोलन लड़िया नौजवान आए है, बहुत वड्डा हिस्सा नौजवानों का इमानदारी दे नाल उत्थे गया, वो किसी पोलीटिकल भावना दे नाल नहीं गया, वो मुद्दे ते मंग नूं लैके गया। इस करके असी अंदोलन नूं शाबाश दिंदे आ ते अंदोलन नूं शाबाश देनी भी चाहीदी है। बाकी जिहड़ियां तुसीं अड़चणां जां समस्यावां दी गल कीती है ये जायज है भाई, गल तुहाडी बिल्कुल, ये उत्थे सारा कुछ इदां दीआं बड़ा कुछ जिहड़ा जिहनूं असी ठीक नहीं आख सकते, बहुत कुछ नज़र आया।
0: सो बहुत शुक्रिया जी, कल नूं मिलदे हां, हुण बहुत सारियां कॉल्स ने, आपी कल नूं फिर नवां दिन नवी शुरुआत नवीं गल्लां बातों दे विच आपां फिर हाजरी भरांगे। सो इत्थे हुण तक दे सफर लई थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, कल नूं मिलदे हां इसे समय इसे कड़ी इसे पल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।
1: मेहरबानी जी, बहुत बहुत।
0: सो 905-673-3337 जी, हुण समां हो चुक्या जी पंजाबी लहरां दे अगले हिस्से दे विच नवी सिद्धू शो ड्राइव टाइम प्राइम टाइम शो दे विच मिलदे हां, ते हुण मैनूं इत्थे दिओ इजाजत ते दांदिया जांदिया फिर एक बार मैं तुहानूं सुनेहा देना चाहूँगा कि तुसीं जे एक वधिया सुचजी गायकी सुनना चाहुंदे हो, रंगले सरदार 7 अगस्त फ्राइडे की शाम नूं ब्रैम्पटन रोज़ थिएटर दे विच पहुँच रहे आ, मेरे कोल कुछ टिकटां ने, जे तुसीं ओह लैके ते अपने शो दा हिस्सा बनना ਤਾਂ 437-870।
2: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ।
3: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ESA ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ higherlicense.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 9054512600. Hello bro, kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons ch baith jaiye.
0: Oh yaar, ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हमें कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: TAWA किचन जाना दी ब्रांच है नजारा। किसी ने जन्मदिन लिए बुक करना, ब्याह शादी की पार्टी लिए बुक करना, 129 गैसट तक तुसी अंदर लग्जरी डाइनिंग दोगे उन्होंने पार्टी वास्ते नज़ारा। 905-790-1699 ते कॉल करनी है या 905-451-2600 नजारा का नंबर है।
1: The Must Société clearance sale is on August 6th to 10th. Save up to 70% on furniture and decor from Must Société and Jardin de Ville. 5 days only, 1270 Caledonia Road in North York, while supplies last. This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900 इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जेटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586800

0: certified health insurance specialist from Top Choice Insurance.
1: जब एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स. वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस. वी सर्व विद अ स्माइल. एच के मूवर्स गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704.
2: हैसल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर.
3: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रेल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री कट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दिया ने. रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह. रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण अते खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकती है. नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 6477409600 647-740-9600 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ.
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

0: वकार खान साहब मेरी लाइन के ऊपर आ गए हैं और वकार खान साहब आपको पता सारे के रॉजर्स दिया डील्स दे माहिर है और ऑथराइज रॉजर्स दे नाल बहुत लंबे अरसे तो इन्हां दे नाल टाई अप है और वकार खान साहब गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप
1: जी थैंक यू सो मच हरजीत जी सब लिसनर नो प्यार भरी सत श्री अकाल
0: जी सर
1: रॉजर्स जी मेरे को रॉजर्स जी बहुत ही बढ़िया प्रमोशन है असि टीवी इंटरनेट और होम फोन दे स्पेशल पैकेज प्रोवाइड करते हैं ओनली इंटरनेट दी भी स्पेशल प्रमोशन है 1500 और 2000 दी स्पीड वाले रॉजर्स इंटरनेट बहुत चीप प्राइस पर दिला देंगे
0: ठीक है
1: मेरे को रॉजर्स दी सेल फोन दे भी बहुत अमेजिंग ऑफर है कैनेडा यूएस अनलिमिटेड कॉलिंग मिले दी आईफोन और सैमसंग भी स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है प्लीज कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन नंबर है 6478648000 असि 18 साल से रॉजर्स दे कॉर्पोरेट इम्पलाई हाँ थोड़ा अकाउंट और एड्रेस चेक करके बहुत बढ़िया प्रमोशन दिला देंगे नंबर अगेन 6478648000 6478648000

0: गीत अब कहाँ मिलते हैं सुनने के लिए, ऐसे गीत तो बस गीतों में रह गए हैं। What a music man, I love it।
1: पथरीली राहों में
0: आ सुन लो ते अल्लाह, पथरीली राहों में कहंदा जिद्दां दा मर्जी समा आवे बस तेरे नाल ही जिंदगी बतीत करनी है। What a lyrics man।

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव ट्रांला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। अच्छा बात, उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी दो बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूर तुहाडे लई पेश कीता जाएगा। सुखी निज मनप्रीत जी तुहाडे लई, सॉरी किरण जी तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करेंगे और मनप्रीत जी हिंदुस्तान तों खबरां तुहाडे लई लेके आउणगे। सूरज सिंह 6:03 ते आया ते 8:44 ते चले जाना। मामा चंद सिंह 9:05 ते शाम नूं आएगा ते 5:52 ते सवेरे जाना। अज दा तापमान 27 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नूं मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नूं 29 डिग्री तापमान है, सारा दिन सूरज चमकेगा। सैटरडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड 27 डिग्री। संडे नूं बारिश पैण दे पूरे सार नजर आउंदे ने, बदलवाई रहेगी, तापमान 26 डिग्री। मंडे नूं 27 डिग्री टैंपरेचर होणगे। पेट्रोल दी प्राइस अज 1 सेंट उपर जा रही है अद्धी रातों ते मंडियां दे भाव जिहड़े ने इह तुहाडे लई जनक जुलर दे सहयोग नाल पेश कीते जांदे ने जी। मंडियां दे भाव च अज इह टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, डाओ, नैसडैक ते सोना थल्ले है। डालर ते क्रूड ऑयल जिहड़ा इस समय उपर चल रहा है। नवदीप बेंस लीड कर रहा है फंडिंग दी, जो पैसे कट्ठे करना हुंदा जिहड़ा फंड रेजिंग, काफी ज्यादा कट्ठे कीते हुए उन्हें ते जिहड़ी इलेक्शन है वह लड़न तैयार है कि उन्हें लिबरल बनियो अपना लीडर बनना है ओंटेरियो लिबरल लीडरशिप दे लई। एक गल है, इन्हें आपकी MP की कुर्सी क्यों छड़ी सी, वह बहुत जरूरी है पता करना। क्यों इतने कुर्सी बन के बह जाते, कोई छड़ा ही नहीं है, घड़ीस घड़ीस के लाने पैंदे आ। आपकी कुर्सी क्यों छड़ी सी, व्हाट्स द रियल रीजन। ये उवें ही है जिवें हुण तक नीना टांगड़ी अते हरदीप गरेवाल ने ना तो माफी मंगी है ना कोई टिप्पणी की है। अजे तो उस टाइम चो वधिया सी, उह कहिंदा देखो जी आपां तो हो गई गलती, जिन्ने पैसे मैं खाधे टैक्स पेयर दे आ चुको। हुण इन्हां ने कोई जवाब नहीं दिता, ना इन्हां ने किसे देसी अखबार ने खबर सांझी कीती है। व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, यारी दोस्ती आपकी जगह खबर तो सांझी कर लो। एनीवे जाने आने स्टे ट्यून, बड़ी जल्दी हरप्रीत जी नाल भी गलबात करांगे। पहला चलते हैं टिक्का जंक्शन। टिक्का जंक्शन लई 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी वे फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इन्हां दे बैंकुएट हॉल या लॉन्ज में छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040। 647-429-4040। मॉर्गेज सोल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसी अपनी मॉर्गेज BC लैंडर तो हटा के A लैंडर नाल करवानी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन ताकि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इस दा भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32। 905-460-9099-905-460-9099-460-9099 इन्हां दा नंबर है। सज्जणा, रब कोलों मंगणा छड्डो, मेहनत करो, रब आपे देवेगा। जिस दिन रब मंगण ते आ गया ना, आखरी साह भी लै जावेगा।
1: बच्चियो, हां जी, मैंने एक गल दा जवाब दियो कि जदों बिजली चमकदी है, कड़कदी है, ते चमक पहला नजर आउंदी ते आवाज बाद च सुनाई दिंदी है, भला क्यों हुंदा इस तरह?
2: क्योंकि मास्टर साहब साडियां अखां अगे ने कन्न पिछे।
1: लावा तेरे कन्ना दे पिछे।
3: फट्टे मुतेरे। ਪੂਰੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?
4: ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਚੱਲੀਏ।
3: ਧਰਮ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ?
4: ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
5: ਬੇਦਾਗ ਸਰਵਿਸ। ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ,
4: ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਬੈਸਟ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਵਲ,
5: ਸਰਵਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ।
4: 905-671-8400 ਔਰ 905-796-8800 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ gilltravels.ca।
0: ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ ਜੀ।
6: ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੌਪ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਕਾਲ 647-784-1213, 647-784-1213।

0: one-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined, mortgage for self-employed, quick closing in 48 hours or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry, Mukesh Chauhan hai.
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: कनाडा में 75 प्लस लोकेशंस दिनाल पिज्जा डिपो लेके आया फुल ऑन टेस्ट द कॉम्बो। 50 प्लस टॉपिंग्स दिनाल बनाओ अपना फेवरेट पिज्जा। ट्राई करो स्वीट चिली मैंगो पिज्जा या शाही पनीर पिज्जा।
5: जूसी अते स्पाइसी विंग्स 25 फ्लेवर्स दे विच अते इंडियन स्टाइल चिकन विंग्स भी ट्राई करो।
4: लोडेड फ्राइज नाल बटर चिकन फ्राइज, शाही पनीर फ्राइज, मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल। अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या pizzadepot.ca ते ऑर्डर करो।
5: ते जे तुसी बिजनेस करना है ते फ्रेंचाइजी @pizzadepot.ca ते आज ही अप्लाई करो। पिज्जा डिपो, स्वाद विच टॉपिंग्स नॉनस्टॉप।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: आज खुश तो बात होगी
2: ओ ता होना ही है जो ढिलों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे ऐ नकदा बनदा ही है।
3: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है,
2: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करने नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। और दस क्या चाहिदा
4: चल क्या रहा यहां पर
2: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। और कोई सेवा।

0: लिए रेडी हो जाओ। बाय योर टिकट्स एट ticketmaster.ca और कॉल 6479648573।
1: हेलो एम 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, यानी कि देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है। ते नाल तुसी दुपहरे सवेरे 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच भी अपने काम कार की एडवरटाइज करनी हो अफोर्डेबल पैकेज आज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होर 416-457-3381 जा तेजिंदर सिंह सिद्धू देना कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 days a week तहाडे अंग संग।

संस्करण ले देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हूं तक देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश प्रदेश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं।
1: हैं, फिर कॉकरोच ते चूहे, वो हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरे पहला ही कहा सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: पैदा कहना घर ही भेज दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो, टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम।

0: 515,000.
1: मैंनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज? कित्थों आएगी इनकम? किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे? अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो।

क्या बात है, बड़ा ही प्यारा गाना आपां हुणे हुणे सुनिया, बंद दरवाजे अमरिंदर गिल दी आवाज़ दे विच। इन्हां दे गाने हमेशा ही सारे सोहणे हुंदे ने, जदों मर्जी सुन लो ते बड़ा वधिया जिहा, बड़ी पॉजिटिव जी वाइब आ जांदी है, बड़ी सोहणी जी इन्हां दे गाने हुंदे ने सारे। उम्मीद है कि तुसीं अज दे प्रोग्राम दे विच चल रहे अपनी पसंद दे गाने ते नाल दी नाल प्रोग्राम नूं तुसीं इंजॉय कीता होएगा। मेरी मुलाकात तुहाडे नाल हुण कल नूं होएगी, दुबारा तो 3 बजे होएगी। ते फिलहाल मेरा टाइम हो गया कि हुण मैं वी तुहाडे तों इजाजत लवां। तुसीं अपना लोंग वीकेंड पूरा इंजॉय कर रहे हो ते होपफुली सारिआं दा हुण तक दा टाइम बहुत वधिया निकलिआ होएगा। ते कल नूं फिर तैयारी तुसीं जरूर कर लो अपनी, बैक टू बेसिक्स, बैक टू अपने डेली रूटीन दे विच आउण दे लई। ते उम्मीद है कि सारिआं दा वीकेंड वधिया निकलिआ, एंड आउण वाले वीक दी शुरुआत तुहाडी साडे नाल हो ही रही है। ते फिर उम्मीद है कि सारे ही उहदे लई वी तैयार बर तैयार होणगे। ते मेरी मुलाकात जिवें कि हर रोज़ दी तरह कल नूं फिर तो होएगी 3 बजे। ते फिलहाल मैं मनप्रीत कौर तूर इत्थों ही तुहाडे तों इजाज़त लैनी हाँ। लास्ट फरमाइशी गाना मुहम्मद सदीक एंड रणजीत कौर जी दी आवाज़ दे विच छड्ड के तुहाडे लई जा रही हाँ, इह वी तुसीं इंजॉय करो। ते मैनूं इत्थे इजाज़त दिओ, कल नूं मिलांगे। हसदे रहो, मुस्कुराउंदे रहो, इंजॉय करो, एंड गड्डी बड़े ध्यान दे नाल ड्राइव करो। मैनूं इजाज़त दिओ, सत श्री अकाल।